0: beats of these pop songs was nothing that the nation was used to listening in Bollywood movie songs. This was the new pop culture, and the young Indians felt its freshness with upbeat rhythms and fun element of storytelling. One such song that not only captured the hearts of the audiences of all ages, but also launched talented Vidya Balan as a Bollywood actress. The story told in the picturization of this song was relatable to the Indian arranged marriage system. But the main singer Palash Sen from the music band Euphoria stole the hearts with his versatile voice and the gripping poetic lyrics of the song. The music, of course, is still fresh in the minds of young and old.
1: जल्दी बता, कश्मीर, गोवा या आगरा? Come on, दीदी, शादी कर रही हो, हनीमून पे तो जाना पड़ेगा ना? बताओ. Agra, Taj Mahal, honeymoon is paradise and I don't believe you, दीदी. कल तुम्हारी शादी और तुम मुझे आज बता रही हो? कौन है वो?
2: वो खाना अंकल के घर के नीचे.
1: That singer, that Bengali singer, he's such a clown. वैसे कब से चल रहा है ये? और पहले नहीं बोल सकती थी?
2: तुझे तो पता है ना पापा कितने orthodox हैं.
1: He also loves you.
2: पता नहीं. एक दिन उसे मेरा हाथ पकड़ लिया था. लगा था जैसे प्रपोज करने वाला है.
3: तेरी तो किसी सिंगर से शादी होगी. मेरे जैसा नहीं, बहुत बड़ा पैसे वाला.
2: पता है छोटी. पूछ तो लिया होता. यू क्लाउन.
4: नमस्ते केशवानंद वासुदेव. अरे भाई सूर्य नमस्कार कर रहे हैं. नाराज क्यों रहे हैं? सुबह सुबह
5: क्यों
4: आजा.
6: Then nothing.